0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव्स, सैटेलाइट और इंटरनेट पर सुन सकते हैं। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: ये खबरें NHK World जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। तवील अरसे तक आमिराना हुक्मरानी के बाद इस्तेहकाम और तरक्की के हुसूल के लिए शाम की कोशिशों की हिमायत की गरज से जापान ने उस पर आयद करदा अपनी पाबंदियां जुज़वी तौर पर हटाने का फैसला किया है। हुकूमत जापान ने इस पॉलिसी की मंजूरी मंगल के रोज़ काबीना अजलास में दी। 59 अफराद और 31 इदारे जिन पर असासे मुंजमित करने जैसी पाबंदियां आयद हैं उनमें से 16 इदारों को पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा जिनमें मालियाती इदारे और तेल कंपनियां शामिल हैं। काबीना के चीफ सेक्रेटरी किहारा मिनोरू ने नामा निगारों को बताया कि पाबंदियों की फहरिस्त से निकाले जाने वाले कई इदारों से तवक्को है कि वो शाम की तामीर नो में किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि शाम में इस्तेहकाम और तरक्की का ताल्लुक बराह रास्त पूरे मशरिक वुस्ता के इस्तेहकाम से है। उनका मजीद कहना था कि जापान इस मुल्क की मदद का इरादा रखता है। मगरबी ममालिक में शाम पर पाबंदियों में नरमी का इकदाम जोर पकड़ रहा है। असद खानदान की दो नस्लों की निसफ सदी से ज्यादा मुत्तकुल इनान हुक्मरानी के दिसंबर 2024 में खात्मे के बाद एक उबूरी हुकूमत शाम की तामीर नो के लिए काम कर रही है। जापानी कंपनियां इंसान नुमा रोबोट के कारोबार को वसत देने के लिए चीनी कंपनियों के साथ इश्तराक कर रही हैं। ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब चीन में इस टेक्नोलॉजी की तरक्की तेजी से हो रही है। चिप बनाने वाली कंपनी रोनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स ने अगस्त में बीजिंग में तहकीक और तरक्की का एक मरकज कायम किया। जापानी कंपनी चाहती है कि मकामी कंपनियों के साथ मिलकर इंसान नुमा रोबोट्स को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी तैयार और इसकी आजमाइश की जाए। रोनेसास इलेक्ट्रॉनिक के नायब सदर ईवो मोरोको ने कहा कि चीन का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि वहां इस शोबे में तेज रफ्तारी से काम करने वाली बहुत सी कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस रफ्तार और मकाम से फायदा उठाना है। मार्च में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के ने एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी में सरमायाकारी की जो मसनूआत साजी के लिए इंसान नुमा रोबोट बनाती है। रोनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स की कोशिशों का मकसद सनती रोबोट्स तैयार करने में मित्सुबिशी के तजर्बे से इस्तेफादा करना है। जापानी कंपनी का कहना है कि ये रोबोट्स चीन में फैक्ट्रियों में बगैर इंसानी अमले के काम के दौरान मवाद मुंतकिल करने और मसनूआत की जांच कर सकेंगे। इंसान नुमा रोबोट्स की हमवार हरकत यकीनी बनाने के लिए बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत होती है, लेकिन कहा जाता है कि इस तरह के अमल में कुछ वक्त लगता है। मजकूरा कंपनियों को उम्मीद है कि चीन की वसी मार्केट में डेटा इकट्ठा करने से तरक्की के अमल में तेजी आएगी।
1: और सामिन, आखिर में आज की अहम खबरों का खुलासा। शुमाली से मगरबी जापान तक के वसी इलाकों में बारिश हो रही है। वसी टोक्यो में मुसलसल 34 दिन बारिश हुई है जो अब तक के रिकॉर्ड पर बरसात की तवील तरीन लहर है। चीन की हुकूमत ने अमेरिका के साथ अपने हालिया तजारती मुजाकरात की तफसीलात जारी कर दी हैं। उसने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती जंगबंदी में 2 माह तक की तौसी की जाएगी। शुमाली कोरिया के एक सिफारतकार ने कहा है कि जौहरी हथियार रखने वाली रियासत के तौर पर मुल्क की हैसियत नाकाबिल तंसीख है। इसके साथ ही NHK World जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई।